0: ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਸਤਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਭੋਜਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਸੁੱਖ ਮਾਣਦੀਆਂ ਹਾਂ।
1: ਖਾਣ ਪਾਣ ਪਹਿਰਨ ਕੋ ਦਾਤਾ, ਬਸਤਰ ਦੇ ਭੂਖਣ ਦੇ ਵਿਖਿਆਤਾ।
0: ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਪੀਣ ਨੂੰ ਤਨ ਢੱਕਣ ਨੂੰ ਬਸਤਰ, ਤੇ ਵੇਖੋ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਥੋੜੀ ਏ, ਸਾਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਹਿਣੇ ਵੀ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
1: ਸਭ ਤੇ ਸੁਣ ਤਿਸ ਕੰਨਿਆ ਕਹਿਓ, ਪਾਲਤ ਪ੍ਰਭੂ ਸਵਨ ਕੋ ਲਹਿਓ।
0: ਚਾਰ ਜਣੀਆਂ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਖਾਮੋਸ਼ ਬੈਠੀ ਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਬੈਠੀ ਏ। ਜੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨੀ ਬੋਲਦੀ ਪਈ, ਸਾਡੀ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਨੀ ਮਿਲਾਉਂਦੀ, ਅੱਗੋ ਉਹ ਬੱਚੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਨਹੀਂ ਭੈਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚੋ, ਕਿਹੜਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਰਿਜਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਰੋਜ਼ੀ ਕੇਵਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਖਾਣ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਣ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ।
1: ਦਾਤਨ ਕੋ ਦਾਤਾ ਇਕ ਰਾਮ, ਕਰੇ ਜਗਤ ਕੇ ਪੂਰਨ ਕਾਮ।
0: ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਨਹੀਂ ਭੈਣੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਮੰਗਤੇ ਬੇਅੰਤ ਨੇ, ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦਾਤਾ ਇੱਕ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਹ ਰਿਜ਼ਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।
1: ਸਭ ਦਿਨ ਸਭ ਕੋ ਭੋਗ ਭੁਗਾਵੇ, ਕਰ ਹਾਰ ਕੋ ਜੀਵਤ ਪਾਵੇ।
0: ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਕਦੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ ਜੇ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਰਿਜ਼ਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉੱਗੀ ਹੋਈ ਬਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਨਹੀਂ ਪਾਲਦਾ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਾਤ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਏ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਿਜ਼ਕ ਕਿੰਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ।
1: ਸੋਨਾ ਦੇ ਸਭ ਲਹਿ ਮਿਨਾਸ, ਤਿਸ ਬਿਨ ਕਹਾਂ ਜੇਨ ਕੀ ਆਸ।
0: ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਰਿਜ਼ਕ ਨਾ ਦੇ ਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵੀ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਭੈਣੋ, ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੇ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਹੀ ਬਚਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਏ। ਵੇਖੋ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲੈ ਤੇ ਸਿਦਕ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ ਏ। ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਨ ਚਿਤਵੈ ਉਦਮ, ਜਾਂ ਆਹਰ ਹਰ ਜੀ ਉਪਰਿਆ, ਸਹਿਲ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਜੰਤੂ ਉਪਾਏ, ਤਾਂ ਕਾ ਰਿਜ਼ਕ ਆਗਿਆ ਕਰ ਧਰਿਆ। ਉਹਨੇ ਪੱਥਰ ਵੀ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਰਿਜ਼ਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਸੂਕੇ ਕਾਸ਼ਤ ਹਰਿਆ, ਜਨਨ ਪਿਤਾ ਲੋਕ ਸੁੱਤ ਬੰਤਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸਕੀ ਧਰਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਚਾਹੇ ਮਾਂ ਹੋਵੇ ਜਨਨ, ਪਿਤਾ ਭਾਵੇਂ ਬਾਪੂ ਹੋਵੇ, ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਇਸਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਜਨਨ ਪਿਤਾ ਲੋਕ ਸੁੱਤ ਬੰਤਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸਕੀ ਧਰਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉੜੈ ਊੜ ਆਵੈ ਸਹਿ ਪੋਸਾ, ਤਿਸ ਪਾਛੇ ਬਚਰੇ ਸਰਿਆ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਮੈਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੂੰਜ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਉੜੈ ਊੜ ਆਵੈ ਸਹਿ ਕੋਸਾਂ, ਉਹ ਸੈਂਕੜੇ ਕੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਖਵਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਉੜੈ ਊੜ ਆਵੈ ਸਹਿ ਕੋਸਾਂ, ਤਿਸ ਪਾਛੇ ਬਚਰੇ ਸਰਿਆ, ਤਿੰਨ ਕਵਣ ਖਿਲਾਵੈ ਕਵਣ ਚੁਗਾਵੈ, ਮਨ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ। ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਹਿਲੋਂ ਦੇਤਾ ਰਿਜ਼ਕ ਸਮਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਤੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਨਮ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਦੇ ਖੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਤਾ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਪਹਿਲੋਂ ਦੇਤਾ ਰਿਜ਼ਕ ਸਮਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਤਾ ਜੰਤ ਉਪਾ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਨਨੀ ਕੇਰੇ ਉਧਰ ਉਦਕ ਮੈਂ, ਪਿੰਡ ਕੀ ਆ ਦਸ ਦੁਆਰਾ। ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਧਰ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਉਹਨੇ ਸਰੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸੇ ਦਿਸ ਦੇ ਦਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ, ਰਾਗ ਆਸਾ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ, जननी केरे उधर उदक में पिंड किया दस द्वारा दे आहार अग्न में रख है ऐसा खत्म हमारा कहन लगे जेड़ा अग विच रोटी देंदा है एवें तू कहना फलाना बंदा देंदा है अग विच जेड़ा रिजक देंदा सी ओही तेनू इत्थे रोजी पिया देंदा है कहन लगे कुम्मी जल में तन तिस बाहर कछू कुम्मी पानी विच आंडे ओदे रेते ते पए ने पंख खीर तिन नाही ना आंडिया नू खंभ ना उन्हां दे दुध दा प्रबंध पूर्ण परमानंद मनोहर समझ देख मन माही पाखान कीट गुप्त होए रहता ताचो मार्ग नाही कहिंदे पत्थर दा कीड़ा पत्थर दे वेचे कोई रस्ता नहीं जिस रस्ते आपां रिजक पहुंचा सकीए देख तन्या जे पत्थर विच पैदा कीते कीड़े नू रिजक देंदा है तू बंदे दी आस ना करी देण वाला केवल एक ओही आ साहब कहिंदे ने बाणी अंदर पाखण कीट गुप्त होए रहता ताचो मार्ग नाही कह तन्ना पूर्ण ताहू को मत रे जीड नाही एवें जी मेरे मना तू डरदा ना रही ए बच्ची कहिंदी नै भैणो तुसी भुलेखे विचो ये सारी सृष्टि की पालना कोई होर प्या कर दे मैं ता गुरमुखा तो बचन सुन के आई हाँ वो ता कहिंदे ने आसन लोए लोए भंडार ओदा टिकाणा हर एक लोक दे विच जो किछ पाया सो एक आवार कहन लगी मैं ता बचन सुने ने महापुरुषा तो के रिजक देण वाला कोई मां बाप नहीं केवल एक वाहिगुरु है
1: राव रंक गज चीटी जोई सबको दाता त्राता सोई
0: कहन लगी देखो भैनो आ तुसी गरीब वल तको भावे मजदूरी करदा है आखर ओ कखां दी कुली विच रोटी पका के खांदा है साडा बापू ते नहीं देंदा जे कोई तनाड़ राजा रोटी खांदा है ओनू ही मालक देंदा है कहिंदी मुकदी गल की मेरे गुरु की बाणी कहिंदी है कीड़ी तो लैके हाथी तक सब दी संभाल मेरा निरंकार करदा है
1: अपर दिखे समरथ है कहां जीवन जो पाले जै कहां
0: कह लगी किदे अंदर समरथ है ओ मेरे वाहिगुरु जी दा मुकाबला कर सके इन्ने जीवां नू कोई पाल सकदा है किसे अंदर ताकत नहीं शायद यही कारण मेरे गुरु नानक साहब जदों विस्माद भी जांदे ने ना ते एक गल कहिंदे ने दातिया मैं इस गलो हैरान ओ तेरा घर की हो जे जिस घर विच तू बैठा है उस घर दे दरवाजे की हो जाए ने जिस दरवाजे विचो तू लंघना है ते पुछया महाराज हैरानी क्यों कहिंदे हैरान की तां इन्ने जीव पैदा करके सब दी संभाल करने मैनू दस तां सही तेरा घर की हो जाए जिथे एक थां ते बह के सब नू रिजक देना असी पढ़ने सो दर तेरा कहा क्यों जै तेरा दरवाजा सो घर कहा क्यों जै तेरा घर जित बह सर्द संभाले जिथे बह के तू सारिया की संभाल करने साहब जी दे ए प्यारी बच्ची कह रही है गुरु नानक दी बाणी दी कृपा नाल के सब नू रिजक मेरा दातार देंदा है कौन है जेड़ा ओदे तो बिना किसे नू रिजक दे सके
1: एम सुन कन्या सब ही कहें हमको पित प्रित पालत रहें
0: कहने एनी गल सुन के दूसरियां जेड़ियां भैणां ने ओ गुस्से विच आ गईयां कहन लगियां चुप कर जा तैनू समझ ही कोई नहीं असीं नहीं जानदियां कौन है रब देण वाला सानू तां साडा बापू ही कपड़े देंदा है सानू तां साडा बाप ही खाण नू देंदा है सानू तां साडा पिता ही हर प्रकार नाल संभालदा है
1: नह देखियो दे तो कित राम देओ जाए किस के कब धाम
0: अबो कहन लगियां असीं नहीं देखिया कि वाहिगुरु कोई है किसे दे घर भी जा के रोजी देंदा होवे कदी तके साडे घर अंदर रब आया होवे ते सानू आ के रोटी दे के जावे
1: अन बस्तर सब करके त्यार किसको कौन देत किस बार
0: कह लगी देख साडा बापू ता सानू कपड़े देंदा है रब ने कदी कपड़े सुवा के दिते ने साडा बापू ता अनाज लिआउंदा है कई तरह दे फल लिआउंदा है तू कहनी राम देण वाला है रब देण वाला है खुदा देण वाला है असी नहीं देखिया किसे दे घर अंदर खुदा ए वस्तुआं लेके आवे
1: एम सुन के कन्या लर परी जाए पिता के टेक सुध करी
0: किन्ने आपस विच गल करदियां करदियां ओ इन्नी कु दृढ़ इरादे वाली है कहन लगी तर्क ना करो विश्वास करो के रिजक देण वाला वाहिगुरु है जिन्हें शरीर दिता है ओदे बचना ते भरोसा कर लवो शायद यही कारण कई वरी मनुख उस रब दी दित्ती हुई दात नू लेके असल विच मैं मेरा ढंग अपने इतिहास की विचार करन दा, जदो इतिहास की पंक्ति उत्ते गुरु की बाणी की मोर लग जाए ना ते गल पक्की हो जाती। साहब ने बाणी विच असल विच बच्चिया दे ख्याल नहीं, हर एक नास्तक मनुख की बिरती है कि रब वस्त्र देंदा है, रब सानू रिजक देंदा है, रब की सदा करन वाला है। ते मेरे साहब ने बाणी विच क्या कहन लगे, नहीं होए जिन कन कीते अखी नाक, जिन जेवा दिती बोले तात, जिन मन राख्या अग्नि पाए, वाजे पवन आखे सब जाए। मेरा गुरु ग्रंथ साहब कहिंदा रमैया के गुण चेत परानी, कवन मूल ते कवन दृष्टानी, जिन तू साज सवार सिंगारिया, गर्भ अग्न में जिन्हें उभारिया, बार व्यवस्था तुझे प्यारे दूध, पर जोबन भोजन सुख सूद, बिरत भया ऊपर साख सैन, मुख अपियाओ बैठ को देन। इन्ना कुछ लैके भी कहना कौन देन वाला है। ते मेरा गुरु अर्जन देव कहिंदा दात्या ए निर्गुण ये तेरे गुणा नू नहीं समझता, ए निर्गुण गुण कशु ना बूझे, बख्श ले हो तो नानक सीजे। देन वाला ओ रिज़क वाहिगुरु वे, साहब ने बाणी विच इशारे कीते, इस पानी ते जिन तू करिया, माटी काले द्योरा करिया, उकत सुरत ले जोत परीख्या, मात गर्भ में जिन तू राख्या। साहब ने बाणी विच किया मात गर्भ में आपन सिमरन दे, तैं तुम राखण हारे, पावक सागर अथात लहर में तारो तारण हारे। साहब ने बाणी विच किया माता के उदर में प्रतपाल करे, सो क्यों मनो विसारी है, मनो क्यों विसारी है एवड दाता, जे अग्न में आहार पहुंचावे। साहब ने बाणी विच किया और की बात कहां कह तो सो, पेट ही के पात बीच बचावे। और रिजक देन वाला एक ही लड़ पईयां ते अगो कहंदी देखो जिन्निया मर्जी दलीलां दे लो, पर मेरे ते असर नहीं, मैं गुरमुखां तो एक बचन सुनिया है के देन वाला वाहिगुरु है, कोई किसे नु रिजक नहीं देंदा।
1: हम सब कहें पिता ते खावत, एक इस बात अपर बिदतावत।
0: किन्ने लड़दियां लड़दियां ए आणियां उठ पईयां ते बापू दे कोल घर गईयां, ते पिता बैठा सी अपने मंजे ते, ए बिचारी भी पिछे पिछे तुर पई। चारा जनिया ने जाके पिता नु घेर लिया ते कहन लगियां पिता जी देखो आ किहो जिया गल्लां करदी पई है, असी बैठियां सा अज इकट्ठियां ते गल चल पई के साडा बापू सानू रिजक देंदा है, साडा पिता सानू बस्त्र देंदा है, ते ए अगो होर तर करदी है।
1: जो प्रतपारे देत हमेश, लग तन ते जिन कीन विशेष।
0: कहन लगे ए तां गल्लां होर करदी है, आखदी है रिजक देन वाला कोई होर है, जिहड़े साडे छोटे जे तन नू संभाल के रखे है, ते जिदी कृपा नाल तन वड्डा हो रहा है।
1: सुख सो शुभ आहार हम करही, किसु बात की चिंतना तरही।
0: कहन लगे असी फिर दलील दित्ती के नहीं, साडी प्रतपालना साडा बाप कर दे, सुख नाल असी आहार करनियां वा, सानू किते रोटी दी चिंता नहीं।
1: ए ने माने मत कह न्यारो, हम सब कहे कीनस निर्धारो।
0: कह लगी देखो असी सारिया ने इको ही ए आपस विच विचार कीती है के देन वाला साडा पिता है, पर एदा ता मत न्यारा है, साडी हां विच हां नहीं मिलांदी।
1: सुनत निरपत पित मूर्ख रोसा, नहीं सिर को लख्यो भरोसा।
0: कहिंदे ने कवि जी उको राजा भी मूर्ख है, ओनू ए समझ नहीं जेड़ियां ए चार कहंदियां ने ए अनजान ने, जेड़ी एक कहंदी पई ओ सच कहंदी पई। कहन लगे आपस विच मूर्ख बंदा जिनू समझ नहीं, एक वाहिगुरु ते भरोसा नहीं।
1: अपने राजमान में फूला, प्रपृत कूल पे ते फूला।
0: किन्ने अपने आ चार गज जमीन ते फुलिया बैठे, राज गद्दी ते फुलिया बैठे, एनू एना पता ही नहीं के देन वाला ता एक परमेश्वर है, मेनू भी रिजक ओने दिता है, राज भाग भी ओदा दिता होया है।
1: सब कन्या निज निकट हकारी, आशे समझने इच्छा तारी।
0: उस वक्त इन्हे सारिया बच्चिया नू अपने कोल बुला लिया, ए पुछन वास्ते भी इन्हां दे मन विच है की है, ए आपस विच जेड़ियां गल्लां करदियां ने इकलियां, आखिर ऐस बच्ची दे मन विच की बैठा है।
1: पृथक पृथक तिन बूझन लागा, कहो तू किसको भुगत है भागा।
0: कहन लगे एक एक बच्ची नू पुछन लगा के दस तू कपड़े किदे दिते पानी है, रोटी किदी दिती खानी है, तैनू दुनिया दे सुख दा साधन किन्ने दिता है, तेरे तन ते जेड़े कीमती गहने पाए ए किसने तेनू दिते हन।
1: सब ने कहो पिता हम तेरा, सावे पर है दर्ब कनेरा।
0: सारिया उची आवाज विच कह लगिया, पिता जी जेड़े तन ते बस्त्र पानिया वा ए भी तेरे ने, जेड़ा आपा हथां विच गहने पाए ए भी तेरे ने, ते जेड़ा असी भोजन छक दिया वा ए भी ता तेरा बख्शा होया है।
1: ब्रिद भारत नित दे दहारा, हम सब भुगते भाग तुहारा।
0: सानू देख पिता कोई फिक्र नहीं, आराम नल घर सुतियां वा, पर साडे जागण तो पहला भोजन तैयार है। एक दिन नहीं रोज तू सानू भोजन पकवान भेजना है, साडी प्रतपालना तुसी कर देवो।
1: निज पगनी सब ते पश्चाती, राज कोयर बोली इस भाती।
0: कहन लगे जेड़ी ओ बच्ची एक कहिंदी सी देन वाला रब्बे, ओनू पुछया दस खां किदा दिता तू खानी है, तैनू बस्त्र कौन दिंदा है। ते परमेश्वर दे भय विच गुरु की बाणी विच भिजी हुई उस बच्ची ने ए बचन कहे हन।
1: हे पित भाग एक को दुआ, भुगत है ए नहीं कब हुआ।
0: लगी हे मेरे बापू एक गल ध्यान नाल सुन ले, कोई किसे दा दिता नहीं उखांदा, एक दे भाग कदी दूजा नहीं उखो सकदा। चेते रखी अपने अपने भाग सारे खांदे ने, तैनू समझ नहीं कदी वेखी के एक दा भाग एक दे मस्तक दे भाग दूजा खा ले। साहब ने बाणी विच कहे कहिंदे ने ता रब दी कृपा है, एक मां दी कुख विचों दो बच्चियां दा जन्म है, एक विचारा दिहाड़ियां करदा पिया है ते एक जेड़ा राज पदवी ते बैठा होए। भाग आपो अपने ने, सतगुरु ने बाणी विच कहा निर्धन सरदन दोनों पाई, प्रभ की कला न मेटी जाई। साहब ने बाणी विच कहा आपन लिया जे मिले, सबको भागत होए, कर्मा ऊपर निबड़ा जे लोचै सब कोई। बापू अपने अपने भाग खांदा हर कोई, कौन किसे नू भाग देन वाला है।
1: निज निज भाग अदक हर घाट, भोगत जग में रंग सुराट।
0: ये गल वखरी के भाग आपो अपने ने, कोई 36 प्रकार दे भोजन रात नू खा के सौंदा, ते कोई सुका प्रसादा खा के सौ जांदा। अपने अपने भाग ने, कोई अपने तन ते खद्दर दे बस्त्र पा के सादे बस्त्र पा के जिन दिन कर लैंदा है, ते कोई एक दिन दे अंदर कई कई तरह दे बस्त्र बदलदा है। आपो अपने भाग ने, मेरे साहब ने सारे गल्लां बाणी विच कहियां ने, हजूर बचन करदे ने ना सतगुरु दे बचन आपां पढ़ने। कबू खाट सफेदी सवावै, कबू भूम प्यार ना पावै, ये तेरी रजा है मेरे मालक। किसे नू तू बस्त्र कीमती, किसे नू बिल्कुल मैले बस्त्र देना। हे पिता भाग आपो अपने ने, अपने अपने भागां दा खांदे हां।
1: सुन पित क्रोध करियो और भारी, सब के सुनते गिरा उचारी।
0: सिंह ने इनी गल सुन दी देर सी, मूर्ख बापू नू समझ नहीं पई। उस धी वल अखां लाल करके ने देखिया, क्रोध नाल एदा चेहरा भखन लगा, ते इको दम थिड़कदी जबान विच ए कहन लगा है।
1: अमुक रंक हम जात मुझारी, तिसके पुत्र कष्ट तन भारी।
0: ते कहन लगा तेनू कौन रिजक देंदा है। कहन लगी एक परमेश्वर, एक वाहगुरु। अपने भाग खानी आ, फिर गुस्से विच आया कहिंदा है चंगा जे अपने भाग तू खानी है, ए नहीं समझदी के मैं तेनू देना। ते साडी जात दे अंदर एक मनुख है जिदे पुत्र नू कोड़ दा रोग लगा हुआ है, साडी बिरादरी विच रहिंदा है, तेनू समझ पै जाए कि देण वाला कौन है। प्यारियो सिर्फ इको ही आ गल जे जेड़ी बंदे नू रब तो दूर लै जांदी। साहब ने मनमुख की परिभाषा ही दित्ती है, देंदे थावों दिता चंगा, मनमुख ऐसा जानिए। साहब ने बाणी विच कहा दात प्यारी, विसरिया दात आरा, दात मिल गई दतार भुल गया। मैं एक खिन विचों निकलन लगा, प्रकरण मिलदा रहीम ने दो दोहरे कहे। एक नवाब सी, उन्हें थाली भर लेनी रुपया नाल, सवेरे सोने दियां मोहरां रखनियां, सारे बंदियां नू देखी जाना जदों भिखारी आउणे ना, ते अपनियां अखां नीवियां करके ते बुक भर के उहदी झोली विच पैसे पा देने, लोकां लंघी जाना। इन्हें कदी चेहरा तक के भिखारी वल देखिया नहीं, नीवी पाई रखनी। ते एक दिन कोई सज्जन लंघिया, ते उन्हें एक गल पुछी, कहिंदा नवाब एक गल तेरी तो मैं खुश हाँ, रब दा भय मनना, लोकां नू दान पुन करना, पर जदों तू किसे दी झोली विच रुपये पाना ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਿਉਂ ਨੀਵੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਰਕੀਮ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖੇ ਕਹਾਂ ਨਵਾਬ ਜੂ ਦੇਨੀ ਐਸੀ ਦੇਨ। ਹੇ ਨਵਾਬ, ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੂੰ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਕਰ ਉੱਚਾ ਬੜਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਤੂੰ ਹੱਥ ਭਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗਣਾ, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਨੀਚੇ ਨੈਣ, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਤੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਅੱਗੋ ਨਵਾਬ ਨੇ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਨ ਹਾਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਜੋ ਬੋਜਤ ਬੇਜਤ ਹੈ ਦਿਨ ਰਹਿਣ, ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਨ ਹਾਰ ਕੋਈ ਔਰ ਹੈ ਜੋ ਬੇਜਤ ਹੈ ਦਿਨ ਰਹਿਣ, ਲੋਕ ਭਰਮ ਮੁਝ ਪਰ ਕਰੇ ਜਾਂ ਤੇ ਨੀਚੇ ਨੈਣ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਕਰਨਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਹੱਥ ਮੇਰਾ ਜੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਮਤਾਂ ਸੋਚਿਓ ਮੈਂ ਦਾਤਾ ਵਾਂ। ਉਸ ਕਮਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘੋੜੀ ਏ, ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਤੇਰੇ ਭਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬਲਵਾਨ ਹਨ।
1: ਹਾਥ ਪਾਵ ਅੰਗਰੀ ਚੜ ਗਈ ਅਸਕੋ ਮੈਂ ਜਬ ਤੋਹੇ ਦੇ ਦਈ।
0: ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਰਿਜਕ ਰੱਬ ਦਿੰਦਾ ਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਘੋੜੀ ਦੇ ਲੜ ਲਾਂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਪੈਰ ਚੜ ਗਏ, ਦੇਖਾਂਗਾ ਤੇਰੇ ਭਾਗ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
1: ਆਪਣ ਭਾਗ ਤਬ ਪੁੰਚਨ ਕਰੀਏ ਨਰਕ ਸਮਾਨ ਕਸ਼ਟ ਕੋ ਭਰੀਏ।
0: ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ ਭਾਗ ਤੂੰ ਭੋਗੀ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਏ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂਗਾ ਤੇਰੇ ਭਾਗ ਤੇ ਨਰਕ ਦੇ ਸਮਾਨ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰੇਂਗੀ।
1: ਸੁਣ ਕੰਨਿਆ ਨੇ ਪਿਤਕੀ ਬਾਣੀ ਸੋਈ ਸੀ ਸਰੀ ਮਨ ਮਾਨੀ।
0: ਬੱਚੀ ਨੇ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਬਾਪੂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਤਲ ਕਰ ਲੈ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਉਹਦੀ ਘਰ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਾਤੇ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪੱਥਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਰੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਚਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੂਲੇ ਦੇ ਲੜ ਲਾਏਗਾ, ਪਿੰਗਲੇ ਦੇ ਲੜ ਲਾਏਗਾ, ਸੱਚ ਜਾਣੀ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉਹਦੀ ਵੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਖੈਰ ਪਾਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨੇ, ਭਾਗ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ ਨੇ, ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ।
1: ਰਿਸਕੀ ਮਾਂ ਸੁਬਰ ਜਿਤ ਰਹੀ ਤੋ ਪਿਤਾ ਨੇ ਰਿਸਕਰ ਕਹੀ।
0: ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਰੋਕਦੀ ਰਹੀ ਏ, ਆਖਰ ਮਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਪਤਾ ਨੀ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਠੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵਾਹ ਹੰਕਾਰ, ਬਸ ਤੇਰੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਅੰਦਰ ਘਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨੀ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੜ ਲਾਨਾ ਪਿਆ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ, ਧੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੜ ਲਾਨਾ ਵਾ। ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਰੋਕ ਨਾ, ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪਿੰਗਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੱਗ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦਾ ਸਬਕ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਭਲਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਲੈ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੀ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਾਂਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ, ਅਗਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਆਖਰ ਭਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਏ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਾਮੀ ਹੰਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਹੀ ਹਫ਼ਤਾ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅਗਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ।

होते परम सम्मान योग शब्द गुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाई मान खोए बैठे गुरमुख प्यारे सतसंगी जनों आप जी ने इस संध्या वेले दे दीवान अंदर हजूर दे पावन पवित्र इलाही बचना दा रस पिना कीर्तन सरवन कीता है। आप जी बड़े प्यार दे नाल सतगुरु गुरु रामदास महाराज उन्हां दी उस्तत अंदर उचारण कीते हुए सवैयां विचों पट्टां दे बचन आपने गुरबाणी कीर्तन विच सरवन कीते ने, जिथे आपां रोजाना सतगुरां दे पावन पवित्र इलाही बचना दी विचार गुरु की बाणी दी विचार करने हैं। उथे हर बुधवार गुरदेव जी दे पवित्र इतिहास नूं भी आपां वाच रहे हां, जिवें पिछले बुधवार आपां ने विचार कीती सी कि पट्टी दे इलाके दा चौधरी जिस दे घर अंदर पंज धियां ने, उन्हां विच्चों इक दा किरदार इक दी भावना नूं परमेश्वर ने इहो जिहा भाग लाया कि जिथे भी कोई महापुरश कोई गुरमुख जन बैठदे ने, इह बच्ची उन्हां दे कोल बैठ के उन्हां दे बचन श्रवण करदी है। ते एक दिन धन गुरु नानक साहब जी दे दर तो बख्शे हुए कुछ गुरसिख जड़े एकांत विच बैठ के गुरबाणी दी विचार कर रहे सन कि हर एक नूं रिजक देण वाला केवल एक परमेश्वर है, हर एक दे भागां विच जो मालक ने लिख दिता है ओ कुछ उस नूं नसीब हो जांदा है। ते इस बच्ची ने गुरदेव दे उस शलोक नूं अपने खिरदे विच दृढ़ कर लिया ते जबान तो कंठ कर लिया कि पुरखां बिरखां तीरथां तटां मेघां खेतां के हर एक नूं रिजक देण वाला परमेश्वर है। जदों बच्ची घर आई है ते एक दिन आपस विच पंजे भैणां बैठियां ने ते चार विचार करदियां ने चार जनियां कि साडा बाप साडा बापू पिता कितना चंगा है, जड़ा पहरन नूं वस्त्र देंदा है, खान नूं भोजन देंदा है, तन ते पाण वास्ते सुंदर गहने लैके देंदा है, ते ए खामोश हो के सब कुछ सुनी जा रही है। पर जदों इहनूं पुछया गया तू क्यों नहीं बोलदी, ते इस बच्ची ने इक्को उत्तर दिता सी, नहीं भैणों ए केवल तुहाडे मन दा भुलेखा है कि देण वाला साडा बापू वे साडा पिता है, नहीं किसे दा कोई भाग नहीं दे सकदा लै सकदा, देण वाला केवल एक निरंकार है, मैं तां उहदा दित्ता खानी हां, उहदे दित्ते हुए वस्त्र पानी हां, उस निरंकार दे दित्ते हुए तन ते गहने पाए ने। आपस विच ए लड़ झगड़ के उठ गईआं ते चारा ने जा के दुनी चंद नूं कहा सी कि देख असी तां कह रहीआं बापू तेरा दित्ता खानियां वा, पर ओह कह रही है देण वाला कोई होर है। जदों बुलाया गया ते इस बच्ची ने बेबाक हो के कह दिता कि देण वाला बापू केवल एक परमेश्वरी जड़ा पत्थर दे कीड़ियां नूं रिजक देंदा है, जड़ा पानी विच पैदा हुए जीवां नूं रिजक देंदा है, जड़ा धरती ते पैदा हुई बनस्पति नूं रिजक देंदा है,
असलियत पुछें ते जो कुछ तू राज भाग मानना पे ए भी उस करतार दी दित्ती दाते ऐवें भुलेखे विच पै के तू कह रहा मैं देण वाला कोई किसे नू देण वाला नहीं अपने भाग खांदे ने उस दे मन नू इन्नी हंकार नू चोट वजी कहन लगा जे तू रब दा दिता खानी है जे तू करतार निरंकार दा दिता खानी है ते साड़ी बरादरी विच एक कोड़ी है मैं तेनू ओदे लड़ ला देंगा फिर देखांगा कि वह करतार वह निरंकार तेरे भागां विच जे होवे तू अपने भागां विच इत्थे नरक भोगेंगे। उस बच्ची ने सत बचन करके प्रवान कर ले इथों तक आपां ने विचार कीती सी। आओ इस तो अगे इस पवित्र प्रसंग नू आपां वचने ते सतगुरु गुरु रामदास दे दर दी लईए टेक। कवि संतोख सिंह ने इस प्रसंग नू गुरु अर्जन देव जी दे वेले नाल संबंधित कीता है, पर जदों इतिहास नू पड़चोलने आ ते असलीयत इह प्रसंग गुरु रामदास जी दे वेले वापरे। गुरु रामदास सरोवर करीब करीब तैयार करा चुके सन, पूर्ण ताल खटाया भाई गुरदास होरां ने जिक्र कीता, पर खैर जिमें कवि संतोख सिंह ने इस नू बयान कीता है, अज इस दीवान दे अंदर संत बाबा लाभ सिंह जी कार सेवा वाले उन्हां दी सुपत्नी बीबी हरभजन कौर जिन्हां दी सतवीं बरसी उन्हां दे सपुत्र वल्लों भी इह समागम मनाए जा रहे ने। सतगुरु कृपा करे इस परिवार नूं अपने दर नाल जोड़ी रखे। आओ प्यारियो इस इतिहासक प्रसंग दी विचार करन तों पहलां मनोबिरतियां एकाग्र करो, सुरत गुरदेव दे चरणा अंदर जोड़ो ते बख्शो आशीष। बड़े प्यार अदब दे नाल उच्चारण करो जी, सतनाम श्री वाहे गुरु जी, करो बख्शिश गुरमुखो, फिर उच्चारण करो जी, सतनाम श्री वाहे गुरु जी।

0: एक ता मैनू एदे ते पूर्ण यकीन बनिया रहे, मेरा मन साबित रह जाए, मेरा अंदर किते डोले ना, तेरे भाणे नू मैं सत करके मन लवां।
1: साधन सासरे दारद महा, पहरन खान ना प्रापत जहां।
0: कवि जी आखदे ने अज पट्टी दे लोक देख दे पए ने, कोड़ी दे लड़ लगी ए बच्ची जदो गई, सौरे घर दे अंदर ना ता पान नू बस्तर ने, ना खान नू भोजन ने, जो कुछ कुछ कु दिन उथे टिकी, जो कुछ घर विच है सी ओ अपने पति नू बना के दिता है।
1: केतक दिन दुख पहको सहयो, बहर अंत के चल मैं चहयो।
0: कुछ दिन इस बच्ची ने दुख भुख नू अपने तन ते सह ले, ते अज ओ जदो पति भी देखदा है ते आखदा रजनीए, पता नहीं मेरे ता नसीब मंदे सन, मेरे भाग ता माड़े ने, मैं ता पता नहीं केड़े कर्मा दा फल पिया भोगना वा, ते घटो घट तू ता मेरे तो गुरेज कर दी, तू मेरे लड़ ना लग दी, शायद तेरा भला हो जांदा। पर अगो उस पति बरता ने उत्तर दिता, नहीं पति, जे एक वरी तेरे लड़ लग गई, उस परमेश्वर ने जे लिखिया सी तेरे लड़ लाना, कौन है दुनिया दी ताकत मैनु रोकन वाली। पर याद रखी, मेरे मन विच कदी गलानी नहीं, मेरे मन विच कदी नफरत नहीं, मैनू होर कुछ नहीं सुझदा, केवल एक गुरु की बाणी, ते दूसरा मैं तैनू परमेश्वर जान के, जितनी वाह लगी मैं तेरी सेवा करांगी।
1: तिस पर रही न बहु दुखियारी, पतवर्त धर्म महा दृढ़ धारी।
0: कवि जी आखदे ने कुछ समा ता घर टिकी है, परत के इस बच्ची ने अपने पति नू खारी विच बिठा ले। भाई कान सिंह नाभा ने खारी दा अर्थ कीता ओ टोकरी, जिस विच अपने पति नू बिठा के अपने शीश उत्ते चुक ले। खारी विच बिठा अपने घर नू छड के किसे होर पासे दूसरी थां ते चल पई। नाल कहिंदी ए, गुरु गुरु जपी जा, मैनू यकीन है कि मेरा गुरु नानक सानू जिथे भी रखेगा अपनी रजा दे अंदर खुश रखेगा। इसने अपने घर नू त्यागया, दूसरे थां ते वसीबा कीता है।
1: पत कुश्ती को तर विच खारी, अप्रग्राम ते मांग आहारी।
0: कहिंदे ने पति नू सिर ते चुक लिया टोकरी विच पा के, ते दूसरे पिंडां विच पहुंच गई। पिंड तो बाहर अपने पति दी खारी टोकरी रख दिए, ते ए दुनी चंद दी धी पिंड दे विच जा के मंगना शुरू कर दी। कुछ घरां विचो रोटी किते सब्जी भाजी मिल जाए, ओनू मंग पिन के ले आउंदी है।
1: पित के पुर ना जाच ना करियो, अपर पुरन ते उधर सो भरियो।
0: ते इस बच्ची ने एक होर भी अपना असूल बना ले, बाकी पिंडां विचो ता जा के मंगांगी, रोटी मिलेगी ओ पति नू देंगी, पर कहिंदी अपने बापू हंकारी ते पिंड विचो मैं मंगन भी नहीं जाना। भुख्या ता रहना परवाने, पर जिदे मन विच इन्ना हंकार है के देन वाला मैं हां, ओदी नगरी विच ता झोली फैला के किसे घर विचो नहीं मंगना।
1: जाच ते आन आन तीते तो, पते अरे आप खाए ले जे तो।
0: पर सिदक वाली ए नहीं है, जदो किसे पिंड विच मंगन जांदी है ना, ते कहिंदी केवल साडे दो ली प्रशादा दे दियो, लालच नहीं, केवल एक वक्त दा प्रशादा मंगना है, आप भी शकना है, ते पति ओ प्रशादा शक नहीं सकदा, ओदे हाथ जड़े ने ओ कोड़ ने खराब कीते पए ने, हत्थां ओदियां ते पट्टी बनी है, अपने हत्थां नाल बुरकियां तोड़नियां ने, अपने पति दे मुंह विच पा ओनू आप पहला प्रशादा छकाना, बच जाना ते उस बीबी ने आप छकना है।
1: महा सुधर्मा तारत धर्म, निज पत्ते ने तारियो परम।
0: कहिंदे ने ओ महा सुधर्म है अपने धर्म विच दृढ़े, अपने पति तो बिना किसे होर दी टेक नहीं, जे सच पुछो ना गुरमत ने, ते हिंदुस्तान दी जड़ी पुरानी संस्कृति है, ओदे मुताबक एक पत्नी नू अपने पति तो बिना किसे दी झाक नहीं। गुरमत ने ता दोना नू बराबर असूल दिते, जे गुरु ग्रंथ साहिब ने कह टुंडेंदिए सुहाग को तौ तन काई कोर, जिन्ना नाओ सुहागनी तिन्ना झाक ना होर, ते नाल

जैसे हम सतगुर राख लिए छड़ा तू गुर पिता तू है गुर माता तू गुर बंदक मेरा सखा सखा जो हमारी विद होती मेरे सतगुरा साबिद तुम हर जान हो आपे हम रुड़ते फिरते कोई बात ना पूछता

ने कर लिया। वापस तो गया चला, पर कुछ दिनों तो बाद भीम चंद के पुत्र का नाम सी अजमेर चंद। एदा रिश्ता कहिंदे ने एक श्रीनगर रियासत है, उस वक्त रियासत सी। खेमकुंड साहब नू जाओ, अजे भी यह पौंटा साहब तो अगे शहर हुंदा है श्रीनगर। इस रियासत का राजा सी फतेह शाह। फतेह शाह की लड़की का रिश्ता राजे भीम चंद के लड़के अजमेर चंद नाल होया है। ते जदों बच्चे का सगन होना सी, इन्हें एक चाल चली के मना गुरु गोबिंद सिंह दे दर तो मिठी जी चाल चल के ते सारियां चीजां मैं अपने घर विच लै आवां, एक वारी लै आवां ते इस फकीर दी की ताकत मेरे तो चीजां दोबारा खो सके। सिख तवारी कहिंदी है इस भीम चंद ने अपना मंत्री वजीर भेजिया कि यह सारियां चीजां प्रसादी हाथी काबल की संगत की भेजा होया कीमती तंबू ते चाननी कनातां ए चंदन दी चौंकी मेरे घर विच रिश्तेदार आने ने, एक वारी दे दियो ते जदों बच्चे का सगन लग गया मैं ये वापस कर दियांगा। आके वजीर ने फरियाद कीती ते गुरु गोबिंद सिंह जी ने सुन के एक गल कही सी, कहन लगे ओ मंत्री जे किते भावना शरदा नाल आउंदो ते शायद ये दाता ये चीजा तुहानू दे देंदे, पर तेरे राजे दा मन खोटा है, एक वारी चीज गई वह कहिंदा वापस नहीं आनी, ते नाले जिहड़ी गुरु के दरबार की चीज है ना सच जानी ये बादशाह दे दरबार की शोभा नहीं बन सकती। ये पातशाह दा दरबार है, बादशाह दा नहीं। एक मैं अर्ज करा, आ हैदराबाद दे निजाम ने नवाब ने एक खिन विचों निकल लगा, एक कीमती चांदनी भेट कीती सी जिदी उस वक्त कीमत 1,45,000 दे करीब सी। महाराजा रणजीत सिंह शेरे पंजाब ने रामबाग विच ए चाननी अपने सिर ते लाई ते जदों कीमती चाननी तकी थल्यों उठ के कहिंदा मेरे सिर ते नहीं, ए चाननी गुरु के दरबार भी चंगी लगदी। उतरवा के लै गया ते जदों दरबार साहिब भेट कर लगा, अगो पुजारियां ने जवाब दिता सी जेड़ी चाननी एक वारी बादशाह दे सिर ते लग जाए वो गुरु दरबार ते नहीं, ए पातशाह दे पातशाह दा घर है। ते फिर कहिंदे ने तरले लैके कहिंदा सी इहनू प्रवान तां कर लो। हैरानगी दी गल, दो पिंड तनखाह वजो लाए गए सन शेरे पंजाब नू केवल इस करके कि जेड़ी चीज गुरु दर ते भेट करनी पहलां अपने सिर ते तू क्यों लाई। आ दो पिंड अजे तीकरां वह दरबार साहब के ना उन्हों का मामला उन्हों का जोड़ा लगान है वह आंदा रहा। परत के यह चांदनी खजाने उत्ते लाते रहे, उन्होंने गुरु साहब के प्रकाश कर लग्या नहीं। एक बारी प्रिंस ऑफ वैल जदों अमृतसर गए तो उत्थे कुछ झोली चुका ने यह चाननी उहदे सिर ते ला दिती। पुजारियां ने उस दिन तो बाद वह चाननी लपेट के केवल एक शीशे के बक्से विच रखी जिहड़ी 84 दे कांड वेले अगन भेट हो गई, केवल ओदी सवाह दियां भरियां होईयां बोरियां कोल रह गईयां, ओ चाननी दा नामो निशान मिट गया। कहण तो मुराद कि जिहड़ी चीज गुरु दरबार दी शोभा है ओ अपने घर दी नहीं, क्योंकि सिख दी ते भावना ही होवे कि मेरा घर बने ना बने पर सब तो पहला मेरे गुरु दा घर बनना चाहिए। मेरे घर भावें एक वक्त दी रोटी पके ना पके, मेरे बाबे दे दर ते 24 घंटे अठे पैर लंगर चलना चाहिए। मेनू तन ढक्कन नू कीमती कपड़े मिल ना मिलन, पर जेड़ा बाबे नानक दे दर ते आ जाए वो तन तो नगन ना जाए, ओदे तन ढक्कन वास्ते बत्तर दिते जान। भीम चंद दा मन कत्ती सी, साहब ने जवाब दे दिता ते भीम चंद ने एक तैया कर लिया ते जिन्नी देर तक गुरु गोबिंद सिंह तो यह चीजा नहीं खोंदा उन्नी देर तक मैं इनू चैन नाल टिकन नहीं देना। एक घटना यह सी। ते दूसरी घटना जदों भीम चंद गया, सिख विद्वान डॉक्टर करतार सिंह लिखते ने वेख्या भी गुरु गोबिंद सिंह दे दर ते भाई जैते वर्गे बैठे, इत्थे भाई बचित्र सिंह वर्गे बैठे, इत्थे जिन्हां नू शूदर कहा जांदा सी ओह गुरु दे कोल बैठ के लंगर छकण। ते भीम चंद ने नफरत भरे शब्द कहे सन, गुरु गोबिंद सिंह तुसी खत्री हो, असी राजपूत हां, जेड़े आ तुसी नीवी जातां वाले शूदर इकट्ठे कीते ने, इन्हां नू की पता के बादशाहियां की हुंदियां ने, साडे खून विच बादशाही है, ये सारे बाहर कढ दे ते असी तेरे सिख बनन नू तैयार हां, क्योंकि जेड़े सारी जिंदगी काम नीवे करदे रहे सरदार बन सकदे ने। उत्थे रतन सिंह पंगू ने एक बचन बड़ा सोहना कहा, गुरु गोबिंद सिंह ने

तू गुरबंधक मेरा सखा सखा, जो हमरी बिद होती मेरे सतगुरा। साबिद तुम हर जानो हो आपे, खम रुड़ते फिरते कोई बात ना पूछता।

गुरु अर्जुन विघ्न के नाशक, विघ्न के नाशक श्री हर गोविंद शुभ सुमत प्रकाशक, श्री हर राय नमो कर जोरी, नमो कर जोरी, गुरु हर कृष्ण मनावो बहोरी।

एह्दे इक बड़ा मीर मनु दा बड़ा वफादार बहुत ज्यादा वफादार एक जरनैल होया, उहदा नां है भिखारी खान। उहने ईरखा विच आके भी मैं इतनी वफादारी कीती, उहने ईरखा विच आके एक हिजड़े दे राही एक गल मैं तुहानूं होर सांझी करन लगा। लड़ी तो छोटा जा बाहर जावांगे, आपां फिर वापस परत आवांगे। जिहड़ी पुराने समय दे अंदर राजे महाराजियां दियां राणियां होया करदियां सन, तां उहनां दे रहण लई इको टिकाणा हुंदा सी। उहनां समयां दे विच उहनां राणियां दे कमरियां विच, क्योंकि हिफाजत तां करनी हुंदी सी, जनानियां अक्सर मर्द दे मुकाबले विच, मैं किसे नूं कोई चैलेंज नहीं करदा, मेरी गल नूं बुरा ना मनायो जे, मैं इस तरह नहीं भी किसे पक्ष च नहीं, मैं पर अक्सर कुदरत ने जितनी इस्त्री कोमल बनाई है उतना मनुख कठोर बनाया, ते ओह अपनी हिफाजत नहीं सन कर सकदी इतनी जदों जालम आउंदे सन। और फिर उन्हां दी हिफाजत करन वास्ते जिहड़े बंदे रखे जांदे सन, क्षमा करे जी मैनूं क्योंकि इतिहास ते इतिहास सुनाउणा ही पवेगा, उदों जिहड़े बंदे रखे जांदे सन ओह बंदे हिजड़े हुंदे सन, तां कि ओह उन्हां महलां विच जा सकण। औरंगजेब दे वेले भी हिजड़े रहे ने, किते वक्त मिलिया तुहानूं लाल किला देखो जी, जाके उहदे विच हिजड़ियां दी थां बणी बकायदा। ते इस लई इस मुगलानी बेगम दे कोल केवल हिजड़ा जा सकदा सी, होर कोई जा नहीं सकदा, उन्हां जोर ते बंदिया वर्गा। ते उस वेले उन्हें जहर दे के एक हिजड़े दे राही भिखारी खान ने अमीन खान दा कतल करवा दिता। मुगलानी बेगम ए तख्त ते बैठी रही। मैंने एक जिक्र थोड़ा जिहा होर चेते आउंदा है, वह मैं कह के फिर इस लड़ी वल आना चाहना, यह आपां विचारांगे अगे जाके सारियां गल्लां। महाराजा रणजीत सिंह दा पुत्तर खड़ग सिंह ओ मार दिता, जहर दे दे के मार दिता। ते जदों उहदा संस्कार करके आए, कवर नौ निहाल सिंह महाराजा रणजीत सिंह दा पुत्तर, खड़ग सिंह दा पुत्तर ओ आ रहा है। इहने ध्यान सिंह डोगरे ने प्रबंध किया भी जदों छत्ते दी थले दी लंघे उदों बरूत विच पाया होया सी, ते अग ला दिओ छत्ता डिग पवेगा ते नौ निहाल सिंह मर जाएगा। हुण ओ थले दी लंघ रहा है ते उत्ते बैठे बंदे नूं पता नहीं भी मैं कदों अग लावां, ते सामने एक बंदा बिठाया होया एस उत्ते बैठे बंदे ने, सामने वाले बंदे नूं देखना है, जदों ओ रुमाल हिला देगा उन्हें अग ला लेनी, ते इहदा मतलब एक थले है पूरा, ते उस वेले जदों उन्हें रुमाल हिलाउणा ते इहने अग लाउणी है, इहदा मतलब नौ निहाल सिंह थले है ते सीधा डिग पैणा। ऐसा प्रबंध किया गया, पर होया कि ओह रुमाल हिलाउण वाला बंदा रुमाल ना हिलावे। क्यों? क्योंकि उस दे नाल ध्यान सिंह दा भतीजा गुलाब सिंह, क्षमा करो जी, ध्यान सिंह दा भतीजा उहदे नाल आ रहा है, ते ओ बंदा इस गल्लों हैरान है भी ध्यान सिंह दा भतीजा नाल आ रहा है, जे मैं रुमाल हिलाता उहने अग ला देनी ते इहदा भतीजा नाल मर जाएगा। ते उहने रुमाल थोड़ा जा लेट हिलाया, जदों ध्यान सिंह ने देखिया उहने रुमाल थोड़ा जा लेट हिलाया, इहने अग लाई, छज्जा डिग पिया, पर नौ निहाल सिंह दे उत्ते सिर्फ इत्थे एक रुपये जिन्ना दाग होया सी, गल वक्री, अंदर इटां ले जाके मार दिता, गल वक्री। जिहड़ी गल करनी चाहना ये करनी चाहना, जदों उस बंदे ने रुमाल नहीं हिलाया ते ध्यान सिंह डोगरा उहनूं पुछदा भी तू रुमाल क्यों नहीं हिलाया, देरी कर दिती, उहने आख्या भी तेरा भतीजा नाल, भतीजे ते पुत विच की अंतर हुंदा, तेरा भतीजा नौ निहाल सिंह दे हत्थ विच हत्थ पाई जांदा सी, मैं किवें रुमाल हिला लैंदा। उहने वट के चपेड़ मारी, कहण लगे चेते रख अगे वास्ते, जिहड़ा राजनीतिक बंदा उहदी कोई धी नहीं हुंदी, उहदा कोई पुत नहीं हुंदा, उहदी कोई पोतरा नहीं हुंदा, उहदा कोई भतीजा नहीं हुंदा, उहदी इक्को इक रिश्तेदार है, उहदा नाम है कुरसी। इह ध्यान सिंह ने वचन कहे, कहण लगे राजनीतिक बंदे दी इको एक रिश्तेदारी है, इको एक उहदा सका है, ओह उहदी कुर्सी है, कुर्सी लई कुछ भी वारना पै जाए ओह वार देगा। हुण मुगलानी बेगम ने अपना पति भी वार दिता ते अपना पुत भी वार दिता, लेकिन बैठी तख्त ते है, सूबेदारी अपने कोल रखी हुई है। कुछ वक्त गुजरिया, इन्हां तीन सालां दे विच, तीन साल दा वक्त गुजरिया, तीन सालां दे विच नौ सूबेदार लाहौर दे बदले, मैं उस पासे ज्यादा नहीं जाना क्योंकि उन्हां दा